संगत नहीं आए। त्रिग जीवै त्रिग जीवास जिन हर जन सद गुर संगत पाई। तिन तुर मस्तक लिखया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

रे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्त हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बंता।

मन पहु करिया कूडे कूडे आवे सैको सा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खिलावे कवन चूगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सी।

पेन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूपे अनूप सरूपा रंक भयो राम कहि भूपा।

तुहे। अपना ध्यान करो प्रतपारा, तुम साहिब में किंकर थारा। दास जान दे हाथी उबारो, हमरे सब बैरियां संगहरो। प्रथम तरो

दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मणे माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

भगत कबीर जी का शब्द राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियरा लोभ करत है आज काल उठ जाहेगा। मेरे वीर जी ने हुक्म किया शब्द गायन करने वास्ते, सो आओ आप सारी संगत मिल करके ये पावन शब्द गायन करिए। पिछले साल जदों आप एक महीने वास्ते कीर्तन की हाजरी भरन आए सदों ये शब्द गायन किया, सो आओ सतगुर सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द विच बहुत महान उपदेश दे रहे हैं कि बंदे आ लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाहेगा, धन जोबन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाए। जिवें कागज नूं पानी विच पा दिए तो गल जांदा है ना, इस तरह प्यारा तेरी हैसियत है, एवें माण ना कर, एवें गर्भ ना कर। ये मनुखा जन्म मिलिया है तेनों सफला करन दा यतन कर, जिन्ना हो सके सच नूं अपनी रसना ते लिया, झूठ फरेब चुगली निंदा ईरखा नफरत साड़ा ये सारा कुछ त्याग दे, रब दे नाल प्यार कर, रब दे जीयां दे नाल प्यार कर, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसै जी। तू सभनी थाई जिथे हौ जाई साचा सिरजनहार जी, सबै घट राम बोलै रामा बोलै, राम बिना को बोलै। वो सभना दे अंदर है, सभना विच ओहदा ही वास है, सब मैं जोत जोत है सोए किस दै चानण, सब मैं चानण को किस दा दिल ना दिखा, किस दा बुरा करना तां दूर दी गल सोच भी ना। सतगुरु जी बाणी राही सानूं समझाउणा करदे ने, पर का बुरा ना राखो चीत, तुम को दुख नहीं भाई नीत। तैनूं कदी दुख नहीं पाउणगे जेकर तुम किसे दा बुरा नहीं चितवंदा। साडी तां अरदास ही इह है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा, सो करो कृपा आओ मिलकर।

उठ जाएगा। हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत ना जाना, नानक बिन वै तिसै सरे बोह, जाके जी प्राणा अंधे, जीवना विचार देव के ते के दिना। दम आ गया ते आदमी नहीं ते मिट्टी दी ढेरी, पर फिर भी माटी को पुत्रा किधरा भजदा फिरदा, चारे पासे नचदा फिरदा है, दौड़ लगी पई है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है। पेखे पेखे सुने बोले दौरे फिरत है, माया गई तो रोवन लगत है, जब कछ पावे गर्व करत है। जदों कुछ हासिल हो जाता है तो माण कर लग पैंदा कि ये मेरा है, ये मेरी कमाई है। अपने बच्चों नूं भी वार वार जताउंदा है कि ये मेरी कमाई है, ये तो मेरा हक है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाणी राही सानूं समझाउणा करदे ने, प्यारिया पता नहीं अगला सुआस आउणा कि नहीं आउणा। जिहड़ा सुआस तेरे कोल है उहनूं सफलिया कर, कोशिश कर वह सफला हो जाए, बेकार ना चला जाए, क्योंकि गिणती सुआसां दी है। गुरु प्यारियो, गण घाले सब दिवस सास, नह बढ़न घटन तिल सार। सुआस गिणती दे मिले ने, जिस दिन तो बच्चा जन्म लेंदा है ना गुरु प्यारियो, उस दिन तो सुआस घटने शुरू हो जाते। जन्म तो बाद एक सुआस भी जिहड़ा लै लिया वो साडी जिंदगी दे विचों घट गया, साढ़े संपूर्ण सुवासों के विचों वह सुवास कट गया। ज्यों ज्यों आप सुवास ले जा रहे हैं, साड़ी सुवासों की पूंजी खर्च हो रही है, खत्म होंदी जा रही है। तो मैं इवें भी कह देव सरल तरीके नाल कि जदों भी इंसान जन्म लेता है उस दिन तो मौत आरंभ हो जाती है, उस दिन तो उस वेले तो मौत आरंभ हो जाती है। क्योंकि जिहड़ा सुवास लै लिया वह साडी जिंदगी विचों कट गया, असी मौत दे उन्ना ही नेड़े हो गए। एक दिन विच जिन्ने सुवास लै ले वह साडी जिंदगी विचों कट गया, असी मौत दे होर नेड़े हो गए। इसे तरह हौली हौली करके सुवास मुक जाते हैं तो बंदा इस दुनिया तो रुखसत हो जाता। मुड़ के दो चार दिन लोग याद करते, बाद विच कोई नहीं पुछता। जिहड़े तू चंगे कर्म किए हो प्यारिया वो तेरे नाल जाने नहीं, इस करके करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। गरीब नवाज सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, आओ प्यार दे नाल शब्द की हाजिरी लगाना करिए।

0: मांगै मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे
1: जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु।
2: बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद रव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आय जिह जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियाए कर नाउ निध आवे ताए। सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान करके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर उदास बेनती है जी। आप जिया ने कृपा रहमत की है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मनु के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया के पावन स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुलचुक की खिमा बख्शना। आप जी के भाणे में दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया है। आई रहन आप दे भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपन सेजा ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु

हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु।

उल्टी रे मन उलटी रे साकत स्यों कर उलटी रे झूठ है की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साकत संग ना छुटकी रे उलटी रे मन उलटी रे सा

ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइय साधु गै संग। जे मार के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जे पैडे महंत गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा कोना, सिंजानू हर का नाम तै नाल पछानू। जय महाभयान तप्त बहु काम, तै हर के नाम की तुम पर शाम। जहां त्रिखा मन तुझ आकरख्या, तै नानक हर आमृत बरखा। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम दरे जन कोट। हर जस करत संत न रात, हर आउ खद साध कमात। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो धान। मंदर रंग रते रंग एक कै, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कपर न भंग।

गुरुदेव अष्टपदे जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तल लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तसे त्याए सदा मनंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटम रहंडावे तसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मनाठ पैर थाका जस गावी जय जय प्रसाद तु सब कहु मान मुखता को जस रसन मखाने जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगे मान पावे नानक पद सिती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिबलावत सराम सनेही जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस गहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभता कै जय प्रसाद तुझको न पहुचे मन सासा सिमरो पर ऊचे जय प्रसाद भाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आभूखन बहरीजै मन ते सिमरत क्यों आलस की जाय जय प्रसाद असवहस्त सवारी मन ते सिमर को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलखत नाराग प्रोय पर अपने मना जिन तेरी मन भनत बनाई ऊठ बैठ सत से ध्याई तिसे त्याय जो एक अलख है।

आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्मज्ञानी एक संहिता ब्रह्मज्ञानी का अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जिस कर प्रभ आप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श प्रभा की पाह्य ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाह्य ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी का सगल मन वाहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा देश ब्रह्मज्ञानी का कथे न जाय अदा ख्याल ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी भी कीमत कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की ख्यात ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता

आपे ही फिर जाप अष्टपदी। जब अकारे काशना दृष्टिता पापुन तब कहते हो ताजबता रिया बन सुन समात बैर विरोध के संकमात। जब इसका वर्ण चिन्ह जाप तब हर्षो कव किसे व्यापत। जब अपने आप आपार भ्रमता मोह कह किस अवत परम। अपन खेला बर तीजा नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुक्त कहो किसको गनी। तब एक हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत तराए तब कमन ने डर कमन कत डराए। आपन जल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहाओ किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप आपिय चर्जा नानक आपन रूप आपियो प्रजा। जय निर्मल पुरख पुरख पातोता तय बिन मैल कहाओ क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्बांध कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत कौ गीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावत किसे भू कम द्रवताव। करण करावन करने हार नानक करते का नह सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई। जय

जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लाख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपां लख होहे ता इक न चले नाल केव सचियार होई है केव कूड़ै तुटै पाल केव सच

है पर्ण है अगाध है अपाध है चूर है अचाध है अमीक है रफीक है अतांध है अबांध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसीक है निर्लाम है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अछूत है अलोक है अशोक है कर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रजंग प्रया छंद नमो सर्वमाने संभवती निदाने नमो देव देवे पेखी अपेवे

देवेशोधर्मे नमो रोगहर्ता नमो रागरूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं।

अगं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदीय भेदीय नामं कामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है अपीत है अपेय है प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है

भूता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांतवय प्रसाद आद रूपे अनाद मूर्ते अजोन परुखे अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेवादिमदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख

हैं। हमें सल सलामे सली के तुम दामे गनी बोल सिकाहते गरीब बोल पराहते बिलंदल मकाने जमीनल जमाने तमीजल तमामे रुजुवल निदाने हरि फुर अदीमे रजाय करकीने अनेकल तरंग है भेद है भंग है जी जोल निवाज है गनी मुल्ख राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी रूप है स्वभाव तो पराज है सदा सर्वसाज है।

अनित्य है, सुनित्य है, अजात है, अजाद है, चर प्रशांत वे प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं,

कबंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कसरी छंद अजय अलय अपह अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज

हे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवार, सेवक सिख सब करतार, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरिन को आय सिंघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं।

न जानी, तत्ते सार न जानी, गुरु बाजहो तत्ते सार न जानी, तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी, गुर कृपा ते सेजन जागे जिन्ना हर मन वस्या, बोलहे अमृत बाणी, कहे नानक सो तद पाए, जिसनो अर्दन हर ले विलांगे, जागत रहन विहानी, माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मन हो वे सारी है।

साहिब जी एक ओंकार सत गुर प्रसाद आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्व रहो भरपूर सगल घट रहो व्याप व्याप देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी उत्पत एक है तू ही एक है अन नाही तू पत हर अंत नाही पारा वार कौन है करे विचार जगत पिता है सर प्राण को आधार जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बल हार हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हार भक्त ले मेरे स्वामी

फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सो कहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुपाहे, दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। देव गंधारी महला पंजवा, उलटी रे मन उलटी रे, साकत स्यों कर उलटी रे, झूठ है की रे झूठ परीत, छुटकी रे मन छुटकी रे,

प्रीत छुटकी रे मन छुटकी रे साकत संग ना छुटकी रे रहाओ ज्यों काजर भर मंदर राख्यो जो पैसे का लुखी रे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रे मांगू दान कृपाल कृपा निध मेरा मुख साकत संग ना जुट सी रे जन नानक दास दास को करिय हो मेरा